0: जिसको बर्बाद परिवार नहीं चाहती थी तो वो बर्बाद परिवार में खाना कैसे को मुझे जस्ते खाए तो बात की खाए की कैसे को भाग भाग लगा के खाए की
1: खाना तैयार हो तो जो जब जब रुपये के तब खाए मेरे घर में आए तो अभी तो कहता हूँ खाना जाए तो हर छोड़

0: जन्म का है, समय समय थे तो तब तो जन्म हो किसी को बता दो किस चीज में तो कहाँ जन्म ना
1: अपने एजुकेशन के जब जमा नहीं तब राजस्थान तो कर लीजिए तो अपन संगत कर ली थी
0: ये तो रहेगा नाचा के गई नहीं तो
1: कौन कौन महीना में कृष्ण कृष्ण खाली गीत गई थी
0: महीना बता पाऊंगा वो सब पुराने गीत सब मेरा

0: रेडियो एफएम द्वारा जारी प्रचारी संदेश।
1: स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता करती वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा में सभा सुलभ रूप में वृद्धि अली यहाँ स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल का कौशल्य अस्पताल भाषण में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती
2: अस्पताल से दे देना सेवा
1: 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा दे
2: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करेगी था
1: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक यान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
2: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा सुविधा संपन्न।

0: और रूस पूरा समाचार।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार नेपाल में 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचाप को जोखिम में छन्। प्रस्तुत तथा तैयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धेरै हुए हुँदा मुटु रोग को जोखिम बढ़ाने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एउटा व्यक्तिले दैनिक 5 ग्राम सम्म नुन सेवन गर्नु उपयुक्त हुने सलाह दिएको छ।
0: नियमित रूपमा हिँड्नु र शारीरिक व्यायामले मुटु स्वस्थ बनाउन मदत गर्छ।
1: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निन्द्रा, सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
0: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
1: चिलो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूमपान सेवन नगरौँ।
1: स्वस्थ रहौँ, सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो गुरुबाबा एफएमद्वारा जनहितकारी सन्देश।

0: बाबा, मई बिन्दु चौधरी। रेडियो गुरुबाबा एफएम से उत्पादित हमार संदेश पर देख साठ एफएम दादापुर बब एफएम ग्लोरिया बांकी का रेडियो
1: पर एफएम रेडियो हाथी मारू जानकी कंपनी का।

0: डॉक्टर पिता इंस्टीट्यूट करोहर सिकाउ पढाइमा ध्यान दिन शून्य
1: डॉक्टर पिता मुसी पचकला काई साग पात दाल गुरिया आरा मच्छी सिका गोठल फूल आयुक्त खाना नियमित पकाई
0: जल फुटका खाना।

0: लिए बच्चा खाना तंदुरुस्त बने, पूरा खाना संसद भी बड़ा समूह संतान का छड़ी
1: समस्या तो

मेरे पास जो है तो बड़ा दुष्ट करत बड़ा ढेर भाड़ा लागत हम तो पूरा दिन चल जाए तो काहे चिंता कर सको पांच दिन कुछ ना साहब बाकी बाजार किसान सबके लग के सीधा करके तैयार कर

avec les poissons, avec les estomacs. C'est vrai qu'il y a un travail de supervision de l'aéra pour que tu aies un peu de chapeau, pour que tu aies un peu de chapeau, pour que tu aies un peu आओ खतरा तो सुबह आओ खतरा बाहर तो समय आओ खतरा आता है खाने के लिए औषधि तो आता है तो तो दस्तर दस तो बाहर पर आता है और अपना आज हम अपने अपने मुख्य राज्य पर जो औषधि तो सही है तो आप भी अपना दस तो बाहर तो सब इसे करते हो मेरे को पंद्रह पंद्रह अपने अस्सी छियासी एक सौ अट्ठाईस अंग्रेजी चारों सी चार्जिंग चार टाइस अंग्रेजी बीस टाइस उन्नीस टाइस हो मैं एक प्रोडक्शन आकर में होता हूँ से दिन हमारा आने वाला आपने बचा आपने बचा समझ से लेकर कुछ ना चावा जो ये प्रोडक्शन है ये आपने बचा

0: ती पार्षद शिकांत केपटचा जन्माला महत्वपूर्ण पालिका करते छिहत्तर प्रतिशत योजना उपभोक्त समिति में से कार्यान्वयन कोविड नवीकरणमा नवीकरण करना 44 निर्माण कंपनी का इजाजत खारिज
1: बागमती नगरपालिका 50% अनुदान में सिंचाई मोटर को स्प्रे टैंकी वितरण करूंगा। नगरपालिका किसान भुगतान का अतिरिक्त उत्पादन करने व आसन खेती में प्रोत्साहन करना हूँ। इसीलिए 50% अनुदान में सिंचाई मोटर तथा चार जेबल स्प्रे टैंकी वितरण करने को नगर पालिका विशेष विकास शाखा का योजना में निर्धारित कार्यक्रम में 35 सिंचाई मोटर को 65 जीवल स्प्रे टैंकी रेखा को 100 ठो कृषि सामग्री लगाही किसान भवन हस्तांतरण के बाद आर्थिक विकास समिति का संयोजक तथा उड़ान दुई को राजक्ष राम किरण थारू का अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नगर प्रमुख सत्यकाल थारू को अनुमति दिया गया। महावितरण कई किलो चामल का प्रभावकारी उपयोग कर किसान भवन सहजी कार्यक्रम उप प्रमुख रत्न कुमारी पाले वा नंबर 3 का उपाध्यक्ष नंदलाल थारू वा नंबर 6 का अध्यक्ष जनबहादुर ओली छेत्री सामाजिक विकास समिति का संयोजक श्याम कुमारी चौधरी पशु सेवा शाखा प्रमुख दीपक राज थापा कृषि विकास शाखा का प्रमुख शाखा का कर्मचारी तथा लाभकारी किसान वर्ग उपस्थित रहा। कार्यक्रम नगरपालिका अनुदान में उपलब्ध भएर कृषि सामान सिंचाई व्यवस्थापन सहक उत्पादन लागत घटाए कृषि उत्पादन में वृद्धि होने जनाई मध्यमी आवासम करीब 70 प्रतिशत शिक्षा दफल में धान लगाना का निम्जल राष्ट्रीय कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यालय प्रत्यान का अनुसार कुछ दिन के नियमित वर्षा और सिंचाई व्यवस्था को कारण जिल्लाभर धान लगेना शांति प्रगति बाहक बहती रहता कार्यालय का सूचना अधिकारी प्रतिमान चौधरी राजापुर उद्योग लगायत को कार्यक्रम में करीब 79% धान लगा करीब जलोक जानकारी वहां के अनुसार असार का तेसरा फाल से नियमित वर्षा विफल चौदह पालिका का टीकाकरण पर फिर समर्थन धान लगाई के अनुमान ये वर्ष मौसम अनुकूल रहकर से धान लगेना उनका को समस्या निकाय पर हो सिंचाई सुविधा निपुक क्षेत्र में किसान मोबाइल पंप से तथा फलफल पोखरी में अवसर रोक पाने पर फेंकते
0: स्थित घड़ियाल कुखुरा प्रजनन केन्द्र में 3 वर्ष 96 घड़ियाल कुखुरा का बच्चा सफलतापूर्वक जन्मबाट 57 घड़ियाल संरक्षण अभियान का राष्ट्रीय महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में लेकिन निकुंज का अनुसार 4 मुसरिया घड़ियाल और 118 अंडा मध्य 96 बच्चा निकलना 10 बच्चा जन्म टिके मरण भाग्य से 12 अंडा

स्थान गैर महापरिषद सेवा पर आप विकास निर्माण का काम शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी सौ सप्ताह के विषय महत्वपूर्ण समस्या वासी क्या सभा प्लस अपना मन खोल रहे रेडियो कार्यक्रम अपन जिज्ञासा आज के लिए टेलीफोन नंबर 84444 और मोबाइल नंबर 98550 3003 मा बंद समस्या जिज्ञासा टिप्पणी क्षेत्र में

सर सहभागी बिना कागजी उपभोक्ता समिति गठन करेगा। वास्तविक निर्माण कार्य पर छेदार से करेगा प्रवृत्ति पूर्वक पीड़क विषय प्रतिवेदन होने लगा। लेखा परीक्षक प्रतिवेदन राजापुर नगर पालिका में पालिका स्तरीय 30 लाख रूपये से ऊपर 22-5 से 20 लाख रूपये श्रम का 45-5 लाख रूपये श्रम का 7-5 से 20 लाख रूपये श्रम का 15-5 लाख रूपये श्रम का 160 योजना कार्यान्वयन उल्लेख करिएगा। आप राष्ट्रीय समाचार को पहले दिन से

जाकर आवश्यक जानकारी लिनु सकेका नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा